व्याकुलता दिनों दिन वधी वधदी गई, गुरु दा प्यार वधदा गया। आप हर वेले सेजल नेत्रां दे नाल हर वेले अरदास करदे रहिंदे हन, हर वेले एही दर्शन प्यासी दिन से रात चितवों अन दिन नीत। विछोड़े दे विच हुन

आवे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो ए अखर लिख के उसे शेख नू बुलाया गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे भाई गुरु के लाल अगलिया चिट्ठिया तो तू प्रिथिया जी नू दित्तिया पर याद रखी ए ना उसनू देवी ए सतगुरां दे चरणां विच जाके रखी क्योंकि आपनू शक हो गया सी कि ए पत्र कामा प्रिथी चंद ने हजूर नू नहीं पहुंचेंगे क्यों कह के सिख नू तागीद करके तोरिया सिख आया उसने देखिया प्रिथी चंद सेवा करवा रहा है उसने ओ रस्ता ही छड दिता उस पासे दी जिथे गुरु जी बैठे सन उत्थे जाके पहुंचिया मत्था टेकिया करीब निवाज में अर्जुन देव जी दी पत्रिका लै आया मत्था टेक के बैठ गया जदों पत्रिका गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने पढ़ी अवस्था देख के इतना प्यार देख के आपदा मन द्रव गया भावे अंतर जामी सन सब कुछ जान दे सन केड़ा भुले सन लेकिन ए बाज किरिया देख के आप जी दा चित अति द्रवीभूत होया उस मौके ही बाबा बुढ़ा आद पंज मुखी सिखां नू बुलाया हुक्म होया जाओ लाहौर अर्जन देव नू लै आओ ओ सानू मिलन वास्ते बहुत व्याकुल हन बड़े बेबल हन ए सिख जांदे हन लाहौर पहुंचदे हन श्री अर्जन देव जी नू कहा आप जी नू हजूर श्री रामदास सच्चे पातशाह जी ने याद की अज ए पत्रिका तुहाडी साहिब जी नू पहुंची जदों अर्जन देव जी नू लै के अमृतसर पहुंचे दरबार विच हजूर सुशोभित सन चरणा विच हाजिर हो गए हजूर दा रूहानी दरबार लग्या है बड़े कीमती शामियाने लगे हन कीमती फर्श विछे होए हन बहुत सारी संगत हजूरी विच बैठी हुई हजूर दे इउं दर्शन कर रही है जिवें करोड़ां चकोर चंद्रमें वल एक टक लगा के देख दे गर्दन पावे मुरड़ जाए दीदार करनू नहीं हट दे कन्ना नाल गुरु की बाणी सुन दे हन जबान करके बाणी दा उचारण कर दे हन निरंतर सिमरन करन वाले प्रेमी इथे जुड़े बैठे हन ऐसा सिमरन ऐसी ब्रह्म ज्ञानियां दी सभा विच जदों धन गुरु अर्जन देव पातशाह पहुंचे तां अपने गुरु पिता दे चरणा ते जाके मस्तक रख दिता नैणा दे जल नाल हजूर दे चरण धो दिते अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाउ नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना

कौड़ी गंभीर प्रकृति का राग है। विदक दी आत्मा कृपा दी जाचना करती है, आपे दी खोज करती है। इसलिए इस राग विच गुरु साहबान ने मन, मत, बुद्धि, आत्मा, मौत, मुक्ति आदि गंभीर विषयों विच गुरबाणी उच्चारण की। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतां दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखन जे खसमै चित करे, पाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वह हन ऋषव अते दैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा रात दा प्रथम पहर पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द बोल हन गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन थिर कर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे।

बहुत प्यारा लिखा है, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोरी है, बाही जनाजी पकड़ी है, सिर दी जय बाही ना छोटी है। असि जकारा बुलावे सारे उच्ची वाह करनी है।

दूसरे बादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दा है। गुरु साहब जी कहंदे ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिहा बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे ने दोस्ती करनी है

एक ओ सज्जन जिनू कच्चा सज्जन कहंदे, कच्चा दोस्त जेड़ा चंगे पासे तू माड़ा पासे ले जाए, ओनू कहंदे ने कच्चा। कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कोई सत्संग जा रहे है ते रस्ते विच मिल पवे ते आखे छाट गुरुद्वारे मंदिर की जाने, आपा किधरे दूसरे पासे चलते। ओ कच्चा सज्जन, कच्चा दोस्त, पक्का सज्जन ओ जे कोई माड़े पासे जांदा होवे ओनू आखे छड माड़ा पासा, चल आपा कीर्तन सुनी किसे चंगे महापुरुष कोल बैठ के रब दी गल सुनी। माड़े पासे तू जेड़ा मोड़े ओ पक्का सज्जन।

जिदे कोल बैठ के आदमी ओदे वर्गा हो जावे, सच्चे कोल बैठांगे ते सच्चे वर्गे हो जावांगे। इस करके दोस्ती करनी कच्चे दी ना करो, पक्के दी करो ते सच्चे दी करो, ताकि आप भी सच्चे

जोग कहन लगा एक और फिर जाओ ओसनु कहो मेरे लंगर विच आके प्रसादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकू दे घर गए बुआ खड़काया पाए तिलकू जी ने बुआ

भाई साहब कहन लगे मेनू स्वर्ग की लोड़ नहीं, फिर बुआ बंद कर ले। चेले वापस आए, जोगी कहन लगा एक बारी फिर जाओ, तिलकू नु आखो

एक इन्नी शक्ति दा मालिक है जेड़ा मेरे आखे नहीं लगदा। जोगी आसन ला के बह गया। रितियां सिद्धियां प्राप्त सन, उन रितियां सिद्धियां दे सदक

जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है, चल के लंगर छक। मैं तेनू सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया। भाई साहब ने

तेरे गुरु दा तेनू वास्ता बुआ ता खोल। गुरु दा वास्ता सुनिया भाई दिल कुछ उठे उठ के बुआ खोले। गुरु दी गल ती गुरु दे प्यारे अपनिया जाना वार देंदे। गुरु दे चरणा तू कुर्बान।

इस जोगी ने पाई दिल को दिनाल पाई, पाई दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां विच लग गए। हुण पाई दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाई दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वल लै तुरिया। इसे वास्ते सहबा ने कहा दोस्ती करनी उन्होंने।

इस आदमी ने उदे पैर वाल देखे लहू वग रहा है, उस रिश वाल देखे जिदिया अखां दे विच दर्द है, उस आदमी वाल तरस भरी निगाह नाल देख रहे कि ए मेरे वाल आवे, ए मेरा कंडा कटे। ए आदमी अगे होया, इन्हे जाके ओदे पैर विचों कंडा कट दिता, पैर ती पट्टी बन दिती। रिश बड़ा खुश होया, हुण दोनां दी दोस्ती हो गई। ओ आदमी रोज लकड़ां इकट्ठियां करके वेचिया करदा सी, हुण जदों भी उन्हें जंगल विच जाना, भालू ने लकड़ां इकट्ठियां करके रख देनियां, उन्हें चुक के लकड़ां पिंड आके वेच देनी, बड़े पैसे कमा ले। इथों तक तो ठीक रहा, इन्ने भला कीता, अगों ने भी इहदी मदद कीती। एक दिन ऐसा होया, लकड़ा लैण वास्ते जंगल च गया, भालू ने लकड़ा इकट्ठियां करके रख दित्तियां सन, अगे ते लकड़ा लैके वापस आ जांदा सी। कहन लगा क्यों ना कुछ घड़ियां आराम कर लो, ए दरख्त थले लम्मा पै गया, ते भालू जिहड़ा सी इहदे सराणे बह गया।

टांग बदली हो गई। जोगी कहन लगा दिल को, तू अपने गुरु की सिफत बड़ी की थी, बड़े गुण दसे ने अपने गुरु ने, पर एक गल दस, तेरे जिस गुरु विच इनिया सिफता इनिया वड़ियाईया ने,

गढ़ शंकर तू आ रही है, वो सारी की सारी जोगी समेत तिलकु समेत कनात के परले पास से बैठा दियो, दूसरे पास साडा आसन ला दियो,

अचानक तूफान आ गया। लोकी सारे डर गए। मलान कहन लगे, बचन दी कोई उम्मीद है? तूफान बड़ा भयानक है, बेड़ी भी डोलन लग पी। इस तरह लगता है होन डूबी कि होन डूबी। मलाह कहन लगा, जे कोई आदमी अपनी बलि देवे ताई तूफान बंद होवेगा। हुण सारे लोग एक दूसरे वाल देखन लग पे कि केड़ा बलि दिंदे। मैं भगवे कपड़े पाए सन।

लगदा भी कोई साधु ना एदा कोई अगे होना ना कोई पिछे जे मर भी गया ता केड़ा किसने रोना है एनू चुके सुट दे। जदो सारे मेरे वाल देखन लग पे ते मैं समझ गया कि इना लोकां ने मैनू चुक के जरूर सुट देना। ओही गल हुई सारे मेरे दुआले हो गए।

संसार ते त्यागिया ही हुण शरीर ते आग ते साडी रखिया करो। मैं बथेरा रौला पाया पर उन्हां लोकां ने मैनू चुक के समुंदर दे विच सुट दिता। मैं तां किसे तरह बन्ने लग गया पर मेरा ओ कान किसे मच्छी या किसे जंतु ने काट लिया। ओदे विच इक सोने दा मुंदरा भी सी। जदों इन्नी गल जोगी ने कही तां गुरु साहिबां ने कनात दे थल्लियों हाथ दूसरे

जो गिरो रे रहा नहीं जाता पातशाह दर्शन दे होन बर्दाश्त नहीं होता कि होन तेरे तो दूर रवा। गुरु साहब ने इशारा किया, सिखा ने कनात हटाई। जदू जोगी ने दर्शन किए चेहरा चमकद है, अखां विचों अमृत की वर्खा होंदी है। जोगी उठिया चरणा ते सिर रख दिता, भुल गया मैं 100 साल तू उत्ते है, रितियां सिद्धियां का मालक है, सब कुछ भुल गया चरणा ते सिर रखिया। धन गुरु अर्जन साहब ने जोगी ने उठाया, जोगी वाल मेर की निगाह नाल देखिया, रिद्धियां सिद्धियां को उत्ते करके गुरसिख बना दिता। भाई तिलकू वाल होए साहब जी, भाई तिलकू नु फड़ के अपने गल दे नाल ला लिया ते कहन लगे, भाई तिलकू तेरे वर्गे सिखा वास्ते ही ता बाणी कहंदी है, तिना गुरसिखा को हों वारिया, जो बहंदिया उठदिया हर नाम ध्यावे। तेरे वर्गे सिखा तो कुर्बान हां, जेड़े बहंदिया उठदिया नाम जपदे ने ते जपांदे ने। जिनी सचड़ा सच सलाहा हों तिन लागों पाए।

जिनू गुरु ने अपने गल दे नाल आया वड़ियाई दिती निहाल हो गया। जोगी भी हुण गुरु दे चरणा दे नाल जुड़ गया। सारा संग सारे दर्शन कीते, कुछ दिन अमृतसर रह के भाई दिलकू ए जोगी इना सारिया लोकां दे नाल गुरु दी सिफत करदे होए वापस गढ़ शंकर नूं तुर पए। वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा, रंग पुरंग अनेक न जापन करतबा। ए अकाल पुरख तू बड़ा वड्डा है, तेरे रंग कोई नहीं जान सकदा, तेरा अंत कोई नहीं पा सकदा। भाई तिलकू दरिया सी, गुरमुख सी, जोगी ने दोस्ती की थी, जोगी तर गया। इस वास्ते गुरु अंगद साहब कहंदे ने, उन्हां दरियावां गुरमुखां भले पुरशां नाल दोस्ती करो जिन्हां दे दोस्ती दे नाल, जिन्हां दे साथ दे नाल तुहाडे विच चंगे गुण आण, तुहाडा

परमात्मा अकाल पुरख की उस तत्व वड़ियाई दसी। भगत कबीर जी कहते ने हे भाई आ उस सतगुरु की पूजा कर, उसकी आरती इंज गायन कर जिवें कि ओ परमात्मा अकाल पुरख वड्डा है ते उसनू याद भी वड्याइयां दे नाल कर। हुण सतगुर की पूजा की है, सतगुर की आरती की है। प्रोफेसर साहब सिंह जी ने इन्हां शब्दां दे अर्थ बड़े सुंदर कीते ने। लिहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई गुरु की आरती, सतगुर की आरती, गुरु की पूजा, गुरु के हुक्म मुताबिक चलना, गुरु के दसे मार्ग से तुरना, जिवें गुरु चलावे उवें चलना, ते गुरु के बाणे विच गुरु की रजा विच रहना, यह गुरु की आरती है। ते गुरसिख नेता प्रति उस मालिक की आरती विच जुड़े आ रहे हैं। ते कहिंदे ने आरती है, आरती करके परमात्मा की पूजा करके परमात्मा नूं रजा के उहदे कोलों कुछ मंगना, इहनूं कहिंदे ने आरती। परमात्मा कोल कुछ डिमांड करनी, कुछ जाचना करनी, उहदे अगे अरदास करके उहदे कोलों कुछ मंगना। सो सतगुरु जी ने ख्याल बड़ा सुंदर दिता है। कल आपां गगन में थाल अता शबद बजंत बेरी रहाओ, इथों तक आपां विचार सरवण कीती सी। आओ अगले तुकां दी विचार अज आरंभ करिए कि सतगुरु जी ने सानू इस विच उपदेश कैसा दिता है ते भगत कबीर जी की कह रहे ने। इधर भगत कबीर जी ने बाणी विच कुछ आरती दे बचन कहे ने, इधरों धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने। आपां दोनां नूं सरवण करना है कि उस मालिक की पूजा, उस मालिक की आरती किवें कीती जा सकती है। सहस तब नैन नन नैन है तोए, कौ सहस मूरत नन्ना एक तोई। सहस तब नैन नन नैन है तोए, हे परमात्मा तेरे सैकड़े अनेक ही नैन हैं, हजारां दी गिनती विच तेरे नैन हैं। सहस तब नैन, हुण फिर अगे लफज आ गया है, सहस तब नैन नन नैन है तोए। हे परमात्मा तू प्रगट भी है ते तू गुप्त भी है। जिवें तेरे हजारा नैन हन ते अकाल पुरख होण दे नाते तेरा कोई भी नैन नहीं है। हजारा तेरिया अखां हन लेकिन तेरी कोई भी अख नहीं है। सहस तब नैन नन नैन है तोहे, कौ सहस मूरत नना एक तोहे। एक पासे कहिंदे ने तेरियां सहस मूर्तां ने हजारां, पर हे अकाल पुरख जे तेरी वडियाई वल जुड़िया जाए तेरी कोई मूर्त नहीं है, क्योंकि तू मूर्त तो रहता है, तेरा कोई चिन्ह चक्र नहीं है, तेरा कोई आकार नहीं है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने

में जोत जोत है सोए, क्योंकि तू सर्वव्यापक है। सारे अंदर हे परमात्मा अकाल पुरख केवल तेरी जोत है, सब में जोत जोत है सोए। जिवें तू सर्व व्यापक है, सर्व व्यापी है, हर थां रमिया होया है, इसी तरह तेरी जोत सारिया विच व्यापी हुई है। तिस तै चानन सब में चानन होए, कहिंदे ने सारिया अंदर चानन प्रकाश हे मालक तेरी जोत दाई है। तिस कै चानन सब में चानन होए, तेरी जोत दा सारिया अंदर प्रकाश है। एक चानन है पर एक गल सतगुरु ने कमाल दी कर दिती, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ए जिहड़ी जोत है ना, गुरसाखी जोत प्रगट होए, हुंदी गुरु दी कृपा नाल है, एवें प्रगट नहीं हुंदी। जब तक असीं गुरु नूं नहीं ना मिलांगे, ए जोत साडे अंदर प्रगट नहीं हो सकती। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो गुरु की कृपा नाल अंदर जोत जग पवे, तो फिर की हुंदा है,

हे निर्गुण स्वरूप, हे दुनिया दे मालिक, हे सृष्टि दे मूल, हे जगत नू बनान वाले परमात्मा, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया। बड़े बड़े सिद्ध जोगी जती जिन्ना ने तेरा ध्यान ला के, तेरा ध्यान तर के बड़ा बड़ा तप कीता, बड़ी बड़ी भगति कीती, सिद्ध समाध समाधियां ला ला के, पर कहते ने अंत नहीं पाया, तेरा अंत ना पा सके, तेरा अंत ना ले सके। फिर की होया, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, कहते ने आकर हार के तेरी शरण विच आ गए, तेरी शरण विच आ डिगे, तेरे चरणा नाल लग गए कि हे मेरे मालक, असी तेरा अंत नहीं पा सके। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई जी वह अंत नहीं पा सके, उन्होंने आखिर मालिक दे चरणा विच डिगना पिया, ते तू ही उस लैण ते ना तुरी, तू वह आरती करनी है जेड़ी आरती तेनू गुरु ने समझाई है। केड़ी आरती है? सतगुर पूजो पाई। आप ही अपने गुरु की पूजा कर, अपने गुरु के चरणा न लग। अगे भगत कबीर जी ख्याल देते हुए समझाते ने, कहते ने, ठांडा बरमा निगम विचारे। आरती उसकी करनी है जिसके दरबार विच बर्मा वर्गा खड़ा होके, ब्रह्मा बहुत वड्डा देवता है, पर ब्रह्मा भी उसके दरबार विच खड़ा होके वेद विचार रहा है। ठांडा बर्मा निगम, निगम का भाव है वेद। ठांडा बर्मा निगम विचारे, अलख ना लखिया जाए। क्योंकि हे परमात्मा तू अलख है, लखन तो बाहर है, तेरी लीला लखी नहीं जा सकती, तेरे गुण कहे नहीं जा सकते, तू इतना बेअंत है, तेरे गुण बयान नहीं कीते जा सकते। अलख ना लखिया जाए, वो अलख है जो लखिया नहीं जा सकता। अगे भगत कबीर जी कहते ने, तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे पुजारा, जोत लाए जगदीश जगाया, पूजे पूजन हारा। कहते ने, हे मेरे मालिक, तेरी आरती दी समझ कोई विरला ही जान सकता है, किसे विरले दी ही समझ ए गल आ सकती है, कोई बूझे बूझन हारा, कोई इस गल नू बुझ सकता है। हर किसे दे वस दा रोग नहीं कि तेरी इस आरती नू समझ सके। हुण कहिंदे ने, ख्याल करना, मैं कल भी जिक्र कर रहा सा, तीन चार चीजां दा दीवा बालन लई तीन चीजां दी लोड़ हुंदी है, तेल, दीवा ते बत्ती। पर इत्थे भगत जी कहिंदे ने, हे मेरे मालक, तत तेल नाम की आबादी, मैं जिहड़ा तेल पाया ना इत्थे, तत दा पाव है ज्ञान। तत तेल, मैं ज्ञान रूपी तेल पाया, नाम किया बाती, कहते ने जिहड़ी विच बत्ती है ना, वह मैं नाम दी पाई है, ते इस शरीर नू दीपक बनाया। ध्यान देना हुण, इत्थे दीपक आटे का नहीं है, मिट्टी का नहीं है। कईआं ने अपनी समर्था मुताबक स्टील का, कोई चांदी का, ऐसे इत आदक दीवे बना लेंदे ने। पर भगत कबीर जी कहंदे ने, हे मेरे मालिक, मैं ज्ञान दा तेल पाया, नाम दी वट्टी पाई है, इस शरीर दे अंदर दीवा बना के कीता की है, तप्त तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजाला। फिर मैं इस तन नू दीपक बना लिया, ते हे मेरे मालिक हुण तू कर कृपा मेरे ते, जोत लाए जगदीश जगाया। ए जोत कदों जगी? जदों असी जगत तारन हार दे नाल जुड़ गए, क्योंकि जब तक परमात्मा नाल जुड़िया ना जाए, जोत नहीं जगदी। आ तुसीं वेखदे हो, कई बार तीन चीजां होण, दीवा बत्ती तेल, जब तक बालन वाला ना ना होवे, दीवा नहीं बनता।
दीवा अपने आप कदी नहीं बलिया। दीवे विच एक चीज की भी कमी हो जाए दीवा नहीं बलना। जब तक उन्हें तिना चीजा ना मेलना हो दीवा बत्ती तेल हूं तिना विचों बत्ती कढ दियो तेल ते दीवा रह जाए दीवा नहीं बलना। हूं बत्ती विच रख के तेल ना पाओ बत्ती ते दीवा होवे दीवा फिर भी नहीं बलता। जे असी कही बत्ती ते तेल का संबंध जोड़ दईए दीवा ना होवे दीवा फिर भी नहीं बलता। तिने चीजा ना मेल है पर जे तिने चीजा होण दीवा भी होवे विच बत्ती भी होवे तेल भी पा दिता जाए दीवा फिर नहीं बलता। बालण वाला चाहिए भगत कबीर जी कहते ने हे मेरे मालिक ए मेरा दीवा तां बलना है ए जोत ने उजियारा तां करना है जब तक तेरे नाल संबंध नहीं जुड़ना। तेरे नाल संबंध जुड़ेगा ते ए दीवा बलेगा। कर कृपा जोत लाए जगदीश जगाया बुझे बुझना। कोई बिरला इस गल नूं बुझदा है कि ए जिहड़ी जोत है मालिक नाल रल के जगाई जा सकती है। अगे भगत कबीर जी कहते ने पंचे शब्द अनाहत वाजे संगे सारंग पानी पंचे शब्द अनाहत वाजे। ए अनहद बाजी जो मेरे अंदर एक रस एक तार बज रहे हैं क्योंकि मालिक तेरी कृपा हो गई। पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पानी जिमें बाणी विच जिक्र आउंदा है पंचे शब्द बजे मत गुरमत वडभागी अनहद बजिया। अनहद ये जिहड़ा अनहद नाद है ये अंदर वजदा है। ते भगत कबीर जी कहिंदे ने मालिक तेरी कृपा मेरे ते हो गई पंचे शब्द अनहद वजे एक रस एक तार वज रहे ने। ते ये पंच वाजे किहड़े ने पंज साज किहड़े ने तंती साज ते साध संगत चमड़े नाल मड़े हुए साज ते कुछ तातू दे बने साज ते कुछ कड़ा इत आदक ते कुछ भूख मारन वाले साज। ये पंज प्रकार दे साज ने पंचे शब्द जिन्हां नूं कहिंदे ने पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पाणी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार। हे मेरे मालिक तू मेरी ए आरती प्रवान कर लै मैं ते तेरी इस प्रकार आरती सही समझी है। ते साध संगत कल जिक्र चल रहा सी उस आरती दा मन बनिया किस नूं संपूर्णता विच कीता जाए। फिर तन्ना जी दा भी जिक्र बड़ा सुंदर चलिया। सैन जी ने बड़ी सुंदर गल कीती धूप दीप कृत साज आरती। सैन जी कहिंदे ने इस आरती नूं करन वास्ते चार चीजां दी लोड़ है धूप दीप कृत साज आरती। धूप अगरबत्ती दीवा ते थाल घ्यो पा के जिहनूं जलाया जांदा है ये चार चीजां जिहनूं कहिंदे ने कठियां हो जाण फिर ये दीवा बाल के आरती कीती जांदी है। लेकिन ये जिहड़ी आरती हिंदू मत अनुसार हुंदी है उहदा कोई जिक्र मैं अज पढ़ रहा सा इस प्रकार मिलिया। कहिंदे ने चार वरी ये जिहड़ा थाल है ना चरणा ते घुमाया जांदा है चार वरी ते दो वरी ये नाभी तक इस थाल नूं घुमाया जांदा है ते उपरंत एक बार मुंह ते मुख ते घुमाया जांदा है ते साध संगत उस तो बाद सत वार पूरे शरीर नूं बार बार घुमाया जांदा है। ते जेकर ऐसा मिलिया है कि इहदे विच थाल विच जिहड़े दीवे ने एक तो लैके सौ तक रखे जांदे इहने कि एक दीवा एक नहीं एक तो लैके सौ तक इहनां दी गिनती है इह उहनां दी मर्यादा है। पर सतगुरु कहण लगे भाई तू ऐसा दीप बाल जिहड़ा बुझी ना हमेशा जगदा रवे इसलिए उन्होंने साड़ी चोली विच ए दान पा दिता। हुण भगत तन्ना जी की कहिंदे कहिंदे ने हे मालिक परमात्मा गोपाल तेरा आरता हे गोपाल मालिक अकाल पुरख मैं तेरे अगे आरता इसलिए कर रहे हैं कि मैं तेरे कोलों कुछ डिमांड मंगनी है मैं तेरे कोलों कुछ मंगना चाहना हां। हुण लफज आरता क्यों आया है
کیونکہ اگے لفظ آرتی چل رہا ہے. یہ آرتا کیوں ہے؟ یہ نہ سمجھ لینا ایک کاب رس ہے. جی میں کبھی کوئی کاب لکھتا ہوئے نا انہیں اپنے فکرے نو لبھانا ہوں. ہن اگے لفظ کی ہے؟ گوپال تیرا آرتا جو جن تمری بھگت کرن تے تن کے کاج سوارتا. کیونکہ لفظ تا پورا ہوندا ہے. اے داس تنے والوں ہے مالک تیرے اگے بنتی ہے. گوپال تیرا آرتا کس لئی؟ جو جن تمری بھگت کرن تے تن کے کاج سوارتا. ہن ایک گل میں تہاڈے سمکھ یہ رکھنا چاہنا بھگت تنا جی نے ایتھے وشواس دسے بھائی جیڑے تیرے پرماتما بھگتی کرتے ہیں مینو یقین ہے مینو بھروسہ ہے مینو عقیدہ ہے تیرے تے فیت ہے تو انہاں دے کارج آپ سوارنا ہے تن کے کارج سوارتا. ہن کہندے نے میری منگا کی نے ساتھ سنگت دھیان دینا. دال سیتا مانگو کیو ہمرا خوشی کرے نت جیو. ہے پرماتما اکال پورک میں تیرے در تو آرتا کر کے اے داد منگدا ہاں. دال سیدھا مانگو کیو. دال تسی سارے جاندے ہو جنوں دال تے روٹی دسن سب دنیا دا سب تو وڈا ہے. کہندے نے دال تے سیدھا کہندے نے آٹے نوں. دال سیدھا مانگو کیو. ہے پرماتما کیو بھی دے. ہن اے جے تین چیزاں تو مینو دے دیں ہمرا خوشی کرے نت جیو. میرا من بڑی خوشی نال تیری بھگتی کرے گا. سادھ سنگت اے تے بالکل سیانی گل ہے. او جے دے گھر کھان نو نہ ہوے اونوں بھگتی کتھے سوجدی ہے؟ او دا من کٹدا رہندا ہے. کہنا ہے پرماتما ایویں سنسار وچ بھیج دتا ہی کھان نو دتا کچھ نہیں. جے کوئی کھان نو دےویں تے تیری بھگتی کراں. ہن کھان نو تے لبدا نہیں تیری بھگتی کی کراں. اس لیے بھگت تنا جی کہندے نے ہے مالک تیری بھگتی وی تاں ہوے گی مینوں اے چیزاں دے. دال سیدھا مانگو کیو ہمرا خوشی کرے. میرا من بڑی خوشی نال تیری بھگتی کرے گا. ہن بھگت جی کہندے نے ایتھے ہی بس نہیں ہے پرماتما کچھ منگا ہور بھی نے. پنیا چھاتر نکا اناج منگو سد سیکا. پنیا دا پاو ہے پیر. ہے میرے پرماتما مینو پیراں دی جتی بڑی آلہ چاہیے ہے. پنیا چھادر نکا. ہوں چھادر کہتے ہیں تن دے کپڑے. پیراں دی جتی اچھی ہووے تن تے کپڑا اچھا ہووے سر تے پگ سونی ہووے تے ویکھن والا بھی کہندا ہے کہ بہت اچھی پرسنالٹی وچ آیا ہے. کیونکہ اڈ دی دنیا دی نگاہ سر تو لے کے پیراں تک جاندی ہے. تے بھگت کہندا ہے ہے پرماتما جڑا مینوں ویکھے او مینوں ویکھدیاں تینوں یاد کرے. مینوں ویکھدیاں تینوں یاد کرے. جے پرماتما دا بھگت ایسا ہے تے پرماتما کیہو جیہا ہوئے گا. پنیاں چھادر نیکا اناج منگو سد سیکا. پیراں دی جتھی اچھی ہووے تن دے کپڑے اچھے ہون تے اناج سونی ترتی وائی دا مینوں چاہیدا ہے. اناج وی ایہو جہا نہ ہووے اچھی ترتی وائی دا. اناج منگو سد سیکا. پھر کہندے نے گو پیس منگو لاویری ایک تا جن توری چنگیری. ہے میرے مالک ایک گو چاہیے ایک بینس چاہیے. پر سجل سوئی سجل سوئی ہوئی. کہنے اے ہو جی مینو دے دیویں گو پیس منگو لویری ایک تا جن توری چنگیری. توری کہنے عربی گھوڑی. تیرے بھگت نو گھوڑی بھی چاہیے ہے اسواری واسطے. بس ہوں انج سمجھ لو اس ویلے گھوڑیاں سن اس ویلے موٹر کاراں. کتنی کتنی مہنگیاں کتنے کتنے نام نے انہاں دے جڑے گنے نہیں جاندے. پر اس وقت عربی گھوڑی سب تو آلہ گنی جاندی سی. گو پیس منگو لویری ایک تاجن تری چنگیری. انت وچ کہندے نے ہے پرماتما آ ڈیمانڈ دھیان نال سنی. کر کی کہن چنگی جن تنہ لیوے منگی.
भगत ने परमात्मा नू आरती करके खुश कर लिया, इंज कह लो भगती करके खुश कर लिया। जो हुण परमात्मा खुश है, परमात्मा कहिंदा है भगता जो मंगी जाएगा दे जावांगा, क्योंकि उन्हें अपने वस विच कर लिया। कहिंदे ने हुण जिहड़ी डिमांड अज सामने रखी कि अंत विच मैनू घरवाली चंगी चाहीदी है, क्योंकि घरवाली का बहुत साथ हुंदा है भगती विच। जे घरवाली ना चाहे तो खिमा करना भगती बहुत औखी है, बहुत कठिन है। यह जिन्हें भी भगत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब बैठे ने उन्हां दियां घरवालियां दा साथ है, क्योंकि घरों साथ होना जरूरी है। इसलिए घर की गहन चंगी जन तन्ना देवे मंगी, तन्ने ने मंग के लई। हुण अगे चलिए, भगत कबीर जी इस आरती नूं कहिंदे होए कह रहे ने कि हे परमात्मा, मैं तेरी आरती इसे लिए कीती है कि मैं भी ग्रस्ती हां, मैं भी बाल बच्चरदार हां, मैनू भी कुछ चाहिए। हुण परमात्मा कोलों की मंगे है? भगत कबीर जी बड़ा सुंदर कहिंदे ने, आओ सरवण करिए। सौरठ भूखे भगत न कीजे ये माला अपनी लीजे। भगत जी ने गल बड़े कमाल दी रौंगी, कहते नहीं हे परमात्मा अकाल पुरख आला फाण अपनी माला, भुखिया तो भगती नहीं होंगी, क्योंकि मन रजा होवे तन रजा होवे भगती भी फेर ही होंगी। भुखे तो भगती नहीं होंगी, फड़ लै अपनी माला, मैं नहीं तेरी भगती कर सकता। सोरठ भूखे भगत ना कीजे ये माला अपनी लीजे, फड़ माला। पर कहते नहीं मेरी मंग कैसी है? हाँ मांगो संतन रहना मैं ना ही किसी का देना। कहते नहीं मैं तेरे को मांगना संतों के चरणों की दूर, यह मेरे मस्तक ते लग दी रहा है। हाँ मांगो संतन रहना, पर नाल मैं भी कहना मैं ना ही किसी का देना, मैं किसी का देना ना हो। कई बार होंदा है कि बंदा भगती ते बैठा होंदा है, लैण वाला बूहे ते आ खलोंदा है, वह बाहरों बूहा खड़का रहा होंदा, खोल पाई बूहा मेरा देना मैनू दे, कहिंदा हुण कित्थे मन लगता है? नहीं लगता, मैं ना ही किसी का देना, मैं किसी का देनदार ना होवां, किसी का देना ना होवे। फिर कहिंदे नहीं हे परमात्मा, इह किवें हो सकदा है? ऐसी गल किवें बन सकती है? मां तो कैसी बने तुम संगे आपन दे हो तो लेवो मंगे। माधो माधो कहिंदे ने हे माया दे मालक, हे माधो अकाल पुरख, कैसी बने तुम संगे, ए तेरी मेरी बन किवें आ सकती है, तेरा मेरा संग किवें रल सकता है? हुण संग किस लई करना है? आप ना देवो तो लेवो मंगे। जे परमात्मा तू मैनू ना देवी ते तेरा मेरा इन्ना प्यार होना चाहिए, तेरा मेरा इन्ना संग होना चाहिए, जे तू ना नहीं देवे मैं आपे मंग के लै लो। इसलिए भई आओ, यह है परमात्मा की आरती, उन्हू बंदगी करके रजा लो। वो नहीं ना देंदा, आप मंग लो, क्योंकि साडा वह संबंध प्यो पुत्र का है। पुत्र ने कभी पिता को मंगने लई ग्रेस नहीं किया, पत्नी ने पति को मंगने लई कदी ग्रेज नहीं किया, हक नाल मंगदे ने कि हे परमात्मा मेरा तेरे ते हक है, क्योंकि मैं तेरा पुत्र। इसलिए आओ पहले हक बनाइए फिर मंगना शुरू करिए। हुण भगत जी कहिंदे ने मैं की मंग रहे हां,

दूसरे गुरु बने गुरु अंगद साहब, पर किस तरह बने? गुरु अंगद साहब जी का पहला नाम है भाई लैणा। ए देवी दे पुजारी सन, हर साल बड़ा भारी जथा लैके देवी दे दर्शन करन जाया करते सन। इस वरी भी भाई लैणा अपने साथियों दे नाल देवी दे दर्शन करन जा रहे ने। रस्ते दे विच करतारपुर शहर आया, जिथे इन्हां सारिया ने आके डेरा किया। भाई लैणा अपने साथियों नूं कहण लगे, मैनूं पता लगा है इस करतारपुर शहर दे विच गुरु नानक साहब रहिंदे ने, बड़ी शोभा वड्याई सुनी है उन्हां दी। भाई मेरा दिल करदा है मैं दर्शन करे आवां, देखा कि गुरु नानक कैसा है। साथियों नाल सलाह करके घोड़े ते सवार होए ने। भाई लैणा अपने डेरे तो चल पाए उस जगह वाल जिथे गुरु नानक वसदा है। पुछदे जा रहे ने ओ डेरा ओ धर्मशाला किथे जिथे गुरु नानक बैठा है। अजकल आपां गुरुद्वारे कहने हैं, पहला धर्मशाला क्या करदे सन, जिथे बैठ के परमेश्वर की सिफत की जाए। एक परमेश्वर तो सिवा होर कोई गल ना हो, जिथे सेवा ते सिमरन हो, जिथे दर्दवंदा लोड़वंदा की सेवा की जाए, जिथे दुखिया का दुख दूर किया जाए, जिथे धर्म की गल हो, धर्मशाला ओ गुरु दा परमेश्वर दा घर। भाई लैणा

कोई सौखी चीज मिल जाए, कोई घालना ना घालनी पवे, इस तरह नहीं। ये तुरती चीज इलाही दात जिन्हों लिखी उसे नो मिलनी।

अमृत छतर गुरु रामे दियो समा बीतिया गुरु नानक तो गुरु अंगद बने गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगति

साहब के साहबजादे बाबा श्री चंद गुरु रामदास जी नूं मिलन आए। गुरु रामदास जी का दाड़ा बड़ा लम्मा सी ते बाबा श्री चंद कहन लगे रामदास इन्ना लम्मा दाड़ा इन्नी लम्मी दाड़ी क्यों वधाई होर कोई हुंदा उहदा जवाब कुछ होर हुंदा पर गुरु रामदास का जवाब की एक हथ दे नाल अपनी दाड़ी फड़ ली एक हथ दे नाल बाबा श्री चंद के पैर फड़ ले अपनी दाड़ी दे नाल बाबा श्री चंद जी दे पैर झाड़न लग पे गुरु रामदास ते नाले कहंदे ने बाबा जी तुहाडे वर्गे महापुरुषां दे चरण झाड़न वास्ते ए दाड़ा वधाया होया। तां बाबा श्री चंद कहण लगे रामदास अगर ए निम्रता साडे विच हुंदी ते असी गुरु ना बन जांदे। पट कह रहे ने ऐसे गुरु किथे मिलनगे इस वास्ते सारे दर छड़ के इन्हां दे दर आ पए आ। अमरदास अमृत छतर गुरु रामे दियो हुण गुरु रामदास ने कृपा की थी। गुरु रामदास जी दे तीन सपुत्र सन वड्डे बाबा पृथ्वी चंद उन्हां तों छोटे महादेव ते तीसरे अर्जन देव जिन्हां नूं आपां हुण गुरु अर्जन साहब कह के याद करते। वड्डे दोनों पुत्र ना सेवा वाल ध्यान ना हुक्म मनन वाल ते गुरु अर्जन साहब जो पिता गुरु ने कहा कहा कदी नहीं मोड़िया और आगे आ सेवा दा सदका ए गुरुगद्दी ए इलाही जोत। हुण गुरु रामदास पातशाह ने कृपा करके गुरु अर्जन साहब नूं बख्श दित्ती। अमरदास अमृत छत्र गुरु रामे दियो गुरु रामदास दर्शन परस कहे मथरा अमृत बयन मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जन पिखो नयन। कि हुण पंजवी जोत गुरु अर्जन साहब गुरगद्दी ते बैठे ने जेड़े प्रमाण पुरख ने ते पट कहिंदा है अगर दर्शन करने ने इन अखां दे नाल तां गुरु अर्जन दे करो क्योंकि दर्शन कीते हैं। जन्म मरन सौर जांदा है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी घटिए। इस बाणी इतिहास तों आप सिख्या लैणी अपने गुरु दा हुक्म मनना सेवा करनी सिमरन करना अपने घर विच अपने मां बाप वड्डियां दा क्या मनना उन्हां दा आदर करना उन्हां दी आग्या विच चलना निहायत जरूरी है क्योंकि कहिंदे ने जिन्ने मां बाप दी सेवा नहीं कीती वो कितना भी दान पुन करे वो कितना भी तीर्थां ते जावे वो कदी सफल नहीं हुंदा। मां बाप दी सेवा कीती समझो रब दी

0: दानी दानी तुम दानी तालर तुम फिरना दानी दानी दानी तल तुम
1: बागड़ी बिकते बागड़ी तुम फिरना बागड़ी बिकते बंग बागड़ी तुम फिरना तुम फिरना तुम फिरना तुम फिरना तुम फिरना तुम फिरना।